0: Let's now take you through the top story of the hour. Now, the death toll in Nepal flood tragedy has now crossed the 1,000 mark and nearly 4,000 people are still missing. Rescue operations are continuing in full swing with nearly 12,000 people being rescued so far. But the search team encounter challenges, in fact, as intermittent rain, fresh flood alerts. Among those still unaccounted for are more than 600 hydropower workers. Many fear trapped inside tunnels. And this is where India's specialized rescue teams are making crucial progress, entering the hydropower tunnel and probing about 185 meters inside the Langtang tunnel. India is also deploying forensic teams to help identify victims as hospitals struggle with hundreds of unidentified bodies. Amid the devastation, actor Sonu Sood has now reached Kathmandu with relief supplies for the victims.
1: मेरे साथ इस वक्त रसुआ जिले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहां से रिकवर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या फैसला लिया?
2: संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
1: तो आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है?
2: हो सकता है.
1: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
2: हाँ, करवाना चाहिए. ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है. और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी.
1: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
2: हाँ, करवाएंगे.
1: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
2: हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना, वही उसके लिए तो लापता.

0: कहते हैं ना, यहाँ पर ये या नहीं ये वही रास्ता पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है।
1: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे,
0: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं।
1: वो ठीक है?
0: ठीक है,
1: उनकी तबीयत ठीक है। उनको चोट आई थी?
0: नहीं।
1: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
0: नहीं, मैं घर पर था।
1: आप घर पे थे? आप भी सापरू बेसी में रहते थे?
0: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था। उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। इतना से 7 डेज हो गया है, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
1: तो आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का, और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल, तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको
0: पता चलेगा। वही
1: वो एक तरीका है,
0: और कुछ नहीं है।
2: और लेस्प्रिंग की समोर अपडेट्स कमिंग इन एट द सावन अवास पास और सतना चित्रकूट मध्य प्रदेश वर लेफ्ट इनंडेटेड आफ्टर हेवी रेन्स कॉज्ड अ स्वेल इन द मदाकिनी रिवर। नाउ द रिवर रोज अबाउट 6 meters ओवर द डेंजर मार्क यस्टरडे। वास्ट पार्ट्स ऑफ द सिटी वर लेफ्ट सबमर्ज्ड विद एन इवैक्यूएशन वार्निंग इशूड फॉर रामघाट। द एनडीआरएफ वाज डिप्लॉयड टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशंस। मेनी सिटीजंस वर लेफ्ट होमलेस आफ्टर देयर लाइफ सेविंग्स वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स। Officials say residents have been shifted to a safer location and are being provided with food and other assistance.
3: देखिए, इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, उनके गले तक पानी, यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है, ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएँ, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियाँ बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है, जहाँ पर हम मौजूद हैं तरौहा में, वहाँ पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं, जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है। लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा, तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है।
2: और लेट्स नाउ टेक इट टू उत्तर प्रदेश। Now it's a new age political war playing out on social media, with AI generated videos becoming the latest weapon ahead of the 2027 UP battle. Now the controversy began after the BJP released an AI video targeting Akhilesh Yadav, referring to him as Thipu and even accusing him of corruption. Hitting back, the Samajwadi Party's IT cell released a series of AI generated videos targeting the Chief Minister Yogi Adityanath and showing him smoking a chillum. Now the videos also reference the temple donation theft and show Chief Minister Yogi counting the cash. In one video, Chief Minister Yogi is seen dancing while targeting him over unemployment and the paper leaks. The BJP slammed the videos as an insult to saints and the Sanatan tradition. All right, let's take you through some more developments coming in. Chief Minister Vijay's movie moment in Salem. Now, we're learning an important update, especially coming from Tamil Nadu, in which Chief Minister Vijay has had an epic movie moment. Let's take you through the details.
4: A chief minister on official duty. A superstar surrounded by a crowd. And then an unscripted stop that produced a moment straight out of a movie. Vijay was in Salem. inspecting the Metro Hydroelectric Power Station.

0: Let's now take you through the top story of the hour. Now, the death toll in Nepal flood tragedy has now crossed the 1,000 mark and nearly 4,000 people are still missing. Rescue operations are continuing in full swing with nearly 12,000 people being rescued so far. But the search team encounter challenges, in fact, as intermittent rain, fresh flood alerts. Among those still unaccounted for are more than 600 hydropower workers, many fear trapped inside tunnels. And this is where India's specialized rescue teams are making crucial progress, entering the hydropower tunnel and probing about 185 meters inside the Langtang tunnel. India is also deploying forensic teams to help identify victims as hospitals struggle with hundreds of unidentified bodies. Amid the devastation, actor Sonu Sood has now reached Kathmandu with relief supplies for the victims.
1: मेरे साथ इस वक्त रसुआ ज़िले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहाँ से रिकवर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या
2: नहीं,
1: फैसला लिया?
2: संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, और सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
1: तो आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है?
2: हो सकता है.
1: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
2: हाँ, करवाना चाहिए. ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है. और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है.

0: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
1: करवाएंगे।
0: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
1: हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना, वही उसके यूएस के लिए तो लापता कहते हैं ना, यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ता पर ये खुला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है।
0: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
1: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं।
0: वो ठीक है?
1: ठीक है,
0: उनकी तबीयत ठीक है। उनको चोट आई थी?
1: नहीं।
0: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
1: नहीं, मैं घर पर था।
0: आप घर पे थे? आप भी सापरू बेसी में रहते थे?
1: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था। उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। इतना से 7 डेज हो गया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
0: तो आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
1: जाएगा।
0: वो एक तरीका है
1: और कुछ नहीं है।
2: ओरल एस्प्रिंग के साथ मोर अपडेट्स कमिंग इन एट द सावन और वास पास और सतना चित्रकूट मध्य प्रदेश वर लेफ्ट इनंडेटेड आफ्टर हेवी रेन्स कॉज्ड अ स्वेल इन द मदाकिनी रिवर। नाउ द रिवर रोज अबाउट 6 meters ओवर द डेंजर मार्क यस्टरडे। वास पास ऑफ द सिटी वर लेफ्ट सबमर्ज्ड विद एन इवैक्यूएशन वार्निंग इशूड फॉर रामघाट। द एनडीआरएफ वाज डिप्लॉयड टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशंस। मेनी सिटीजंस वर लेफ्ट होमलेस आफ्टर देयर लाइफ सेविंग्स वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स। Officials say residents have been shifted to a safer location and are being provided with food and other assistance.
3: देखिए, इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं, जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग उनके गले तक पानी, यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएँ, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियाँ बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है, जहाँ पर हम मौजूद हैं तरोहा में, वहाँ पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं, जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है। लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है।
2: और लेट्स नाउ टेक इट टू उत्तर प्रदेश। Now it's a new age political war playing out on social media with AI generated videos becoming the latest weapon ahead of the 2027 UP battle. Now the controversy began after the BJP released an AI video targeting Akhilesh Yadav, referring to him as Thipu and even accusing him of corruption. Hitting back, the Samajwadi Party's IT cell released a series of AI generated videos targeting the Chief Minister Yogi Adityanath and showing him smoking a chillum. Now the videos also reference the temple donation theft and show Chief Minister Yogi counting the cash. In one video, Chief Minister Yogi is seen dancing while targeting him over unemployment and the paper leaks. The BJP slammed the videos as an insult to saints and the Sanatan tradition. All right, let's take you through some more developments coming in. Chief Minister Vijay's movie moment in Salem. Now we're learning an important update, especially coming from Tamil Nadu, in which Chief Minister Vijay has had an epic movie moment. Let's take you through the details.
4: A chief minister on official duty. A superstar. surrounded by a crowd. And then, an unscripted stop that produced a moment straight out of a movie. Vijay was in Salem, inspecting the Mettur hydroelectric power station. But on his way to the airport, Vijay's convoy suddenly stopped at a roadside farmhouse. There, Vijay walked towards a group of elderly women working in the fields. One of them was Chellam. The two then walked together through the garden. The chief minister spent a few unhurried moments with her. And then came the gesture that has taken social media by storm. Vijay reached for his Christian Dior sunglasses and placed them on Chellam's face. For the woman who had come out to simply catch a glimpse of her favorite star, it became an unforgettable encounter.
5: அதனால எனக்கு என்ன கொடுக்கறது என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல. சொன்னேன், களி கிளறிக்கிறேன் சாப்பிடுன்னு, நான் சாப்பிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன்.
4: The images have now traveled far beyond Salem, and social media users are drawing a striking parallel between Vijay's interaction with Chellam and iconic images of the late Tamil superstar and former Tamil Nadu Chief Minister MGR interacting with ordinary people. Vijay may have traded movie sets for political stages, but the superstar connect hasn't disappeared. Moments like this show how quickly that cinematic image can come alive in the real world. Bureau Report, NDTV.
2: All right, on that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.
6: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
7: We are crossing a heavy ridgeline now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not on your side.
8: We are more than 90 people here. So we are trying best.
7: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
6: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: encounter serious challenges such as intermittent rain and even fresh flood alerts. Among those still unaccounted for are more than 600 hydropower workers, many fear trapped inside tunnels. And this is exactly where India's specialized rescue teams are making crucial progress, entering the hydropower tunnels and even probing 185 meters inside the Lang Tang tunnel. Now, India is also deploying forensic teams to help identify the victims as hospitals struggle with hundreds of unidentified bodies. Amid the devastation, Bollywood actor Sonu Sood has now reached Kathmandu with relief supplies for the victims.
1: Well, we have no doubts in my mind that India is equally concerned, and I've seen this on multiple occasions. Even during the 2015 earthquake, India was the first one, Prime Minister Modi was the first one to come up with the immediate rescue arrangement, support, logistics. Even when our Prime Minister at that time happened to be in Indonesia on a conference, but he immediately started acting. So I think India has that gained that prominence, gained that capacity, and gained that has the ability for given the a scale at which India has been able to move, build the infrastructure. There has been a transformation in information quality of the infrastructure that India has been able to build over during the last 12 years. So the whole system is of a different level and caliber.
0: Well, and on ground zero, the search for the missing still continues as families struggle to identify their loved ones. Now, NDTV's Sikta Deo spoke to Jeevan, who is looking for his missing sister. Listen in to that conversation.
2: मेरे साथ इस वक्त रसुआ जिले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं, उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहाँ से रिकवर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या फैसला लिया
3: है? संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
2: तो आपको पता है कि जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है.
3: हो सकता है.
2: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
3: हाँ, करवाना चाहिए. ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है. और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी.
2: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
3: हाँ, करवाएंगे.
2: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं, या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
3: हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना, वही उसके लिए तो लापता कहते हैं ना. यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ते पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है.
2: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
3: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं.
2: वो ठीक है?
3: ठीक है.
2: उनकी तबीयत ठीक है? उनको चोट आई थी?
3: नहीं.
2: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
3: नहीं, मैं घर पर था.
2: आप घर पे थे? आप भी शाहपुर बेसी में रहते थे?
3: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था. उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया. लेकिन उसके बाद कॉन्टेक्ट में नहीं हुआ है, इतना से 7 डेज.

0: के लिए तो डीएनए टेस्ट कराना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी।
1: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
0: हाँ, करवाएंगे।
1: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
0: हो सकता है, जो कुछ पता नहीं है ना, वही उसके यूएस के लिए तो लापता कहते हैं ना। यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ते पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है।
1: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
0: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं।
1: वो ठीक है?
0: ठीक है,
1: उनकी तबीयत ठीक है। उनको चोट आई थी?
0: नहीं।
1: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
0: नहीं, मैं घर पर था।
1: आप घर पे थे? आप भी सापरू बेसी में रहते थे?
0: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था। उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। इतना से 7 डेज हो गया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
1: आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
0: जाएगा। वही
1: वो एक तरीका है,
0: और कुछ नहीं है।
2: Meanwhile, actor Sonu Sood spoke to NDTV from Kathmandu about his relief mission in flood-hit Nepal. He's recounted heartbreaking encounters with families who've lost loved ones, the challenges of getting aid across the border, and why he postponed his shoot to help those in need. Listen in.
3: You're known as a real life hero and you've helped so many people who are in need, and now you're in Nepal. What are some hardships that you're seeing around you right now?
4: You know, we have seen those visuals on our phones, on our TVs, what happened in Nepal, but actually when you come on ground then you realize how bad it is. You know, I've met the families today, thousands of them, homeless people who have lost their parents, who have lost their families, and these individuals are working as volunteers with us, being on the ground where it's very tough to reach out, but they are there. And I met this boy today and he said, I lost both my mom and dad, and he was with me throughout the whole day working on the ground. So I feel heartbroken, but at the same time I feel very motivated that, you know, how people have come together and they are trying to build the nation back. So I think as an individual, as an Indian, it's my responsibility to be with them and do my best.
3: You know, I was also reading this somewhere that you've told a family who lost rupees 25 lakh for their wife's kidney transplant that you'll help them. And this is just one example of how you're helping so many people in Nepal. But talk to us more about any difficulties that you're facing in the relief distribution. What kind of relief distribution and aid work are you looking at, you and your team?
4: My foundation, Sood Charity Foundation, has been working tirelessly across the country whenever problems happen during Punjab, Orissa, Assam. But Nepal was a big challenge because it's a different country. Whatever we send, we need custom clearances, a lot of paperwork, a lot of permissions to receive that stuff. So that is one challenge that we have been facing. But yeah, local authorities have been trying to help and sort out things for us. But this is something new for us to make sure that everything reaches on time. But we are getting a list of the things that are needed by them on utmost urgency. So we are flying them from India. Tomorrow also a huge consignment is reaching here. So we are going to a place called Nuwakot, which is severely affected. Around about 5 to 6 hours from there, we are again heading to another place. We are taking this challenge as it comes in front of you. You don't know what's going to happen, how long it's going to for us to reach there. Even the locals are not aware. But being on the ground, you don't feel tired at all because you have been with the families who have tears in their eyes, but very, very strong. So, yeah.
2: Meanwhile, you must note that vast parts of Satna and Chitrakoot in Madhya Pradesh were left inundated after heavy rain caused a swell in the Mandakini River, which rose 6 meters over the danger mark just yesterday. Vast parts of the city were left submerged with an evacuation warning issued for Ramghat. The NDRF was deployed to carry out rescue operations. many citizens were left homeless after their life savings were washed away in the floods. Officials say the residents have been shifted to a safer location. They are being provided with food and other required assistance. Take a look at these ground reports.
5: देखिए, इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, उनके गले तक पानी, यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएँ, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियां बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है। जहां पर हम मौजूद हैं तरोहा में, वहां पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं। जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है, लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है। चित्रकूट में बीते दिनों आई बाढ़ की निशानी अब तक खत्म नहीं हुई थी कि दोबारा से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस वक्त हम एक गारमेंट्स की दुकान पर खड़े हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जितने भी सामान इनके पास थे वो बर्बाद हो चुके हैं और यहाँ से सामानों को हटाया गया है। उन्होंने सोचा कि अब फिर से दुकान को सेटल करेंगे, लेकिन अचानक से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को दोबारा बाहर निकाला जा रहा है और पानी सड़कों तक आ चुका है। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका?
6: विवेक अग्रवाल।
5: विवेक जी, क्या काम था आपका, कितना नुकसान हुआ?
6: ये बताया, हमारा रेडीमेड का कपड़े का गारमेंट का शॉप था यहाँ पास, और हमको 15 साल यहाँ दुकान खुले हुए हो गया है, और हमारे पिताजी हैं और इनकी भी उम्र 60 साल है, और 60 सालों में इन्होंने ऐसी बाढ़ कभी देखी नहीं। पहली बार ऐसी प्राकृतिक आपदा चित्रकूट में आई है, और जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ा जो 3 दिन पहले बढ़ा था अभी, कि हम लोगों को सामान हटाने का बिल्कुल ही मौका मिला नहीं।
5: सर, 2003 में भी एक बाढ़ आई थी, उस समय उससे ज़्यादा खतरनाक थी?
7: उससे ज़्यादा खतरनाक थी, उससे 5-6 फीट ऊपर ज़्यादा पानी था, और 2003 में तो रफ्तार अच्छी कम थी, थोड़ा इससे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें टंडे में आधा घंटे 1 घंटे के अंदर पानी इतना आ गया है कि कोई आदमी सामान नहीं उठा पाया, कोई भी दुकानदार
5: कुछ समझ नहीं पाया।
7: और जितना ले जाते बना 1 घंटे में ले गए आदमी, इसमें इतना पानी आ गया। इसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया कि जान हान ना हो जा पाए, सामान चला जाएगा तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
5: फिर से जलस्तर बढ़ रहा है, क्या लग रहा है जिस तरीके से
7: बढ़ रहा है? लेकिन शासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा पानी आ सकता है।
5: चित्रकूट में मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, और अभी जो पानी का स्तर है वो कमर से ज्यादा तक पहुंच चुका है। पूरा जो इलाका है वो आपको डूबा हुआ नजर आएगा। आसपास घर, गुमटी, सड़क पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। लोगों के घर के जो सामान हैं वो बहुत ज्यादा बह चुके हैं। आप देखेंगे बाहर लोगों ने टीवियां निकाल कर रखी हैं। कल थोड़ा बहुत जलस्तर कम जरूर हुआ था, लेकिन आज फिर तेजी से जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें फिर से खड़ी हो गई हैं। और ये देखिए, बहुत सारा घर का जो सामान है वो बह चुका है। सर, ये टीवी वगैरह आपकी हैं?
8: जी हाँ।
5: कहाँ लगी थी? घर के अंदर लगी?
8: ये घर में लगी थी, ऊपर
5: के बाहर आ गई।
8: बाहर के बाहर आ गई, नीचे जनरल स्टोर की दुकान थी पूरी।
5: अच्छा,
8: वो सब सामान बह गया, कुछ नहीं बचा,
5: पूरा बह गया।
8: पूरा
5: आपने साफ सफाई की है, लेकिन जिस तरीके से पानी यहाँ तक है तो फिर अंदर आ जाएगा?
8: हाँ, आ जाएगा अंदर, फिर आ जाएगा। जिस तरह बढ़ रहा है वो हो सकता है फिर पहुँच जाए वहीं के वहीं।
5: तो देखिए, जो मंदाकिनी का जलस्तर है वो सुबह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अभी भी आप देखेंगे तो पानी जो है वो बहुत अधिक है, और लोगों को उतनी ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जैसे कुछ दिन पहले जो स्थिति हुई थी, क्योंकि पानी उतरा ज़रूर था लेकिन अब पानी का जो बहाव है वो फिर से कमर तक आ चुका है। पूरी सड़क जो है वो डूबी हुई नज़र आ रही है। लोग फिर से छतों पर शरण लेने के लिए जा रहे हैं। आप ऊपर देखेंगे तो अभी कुछ लोग वहाँ छत पर चढ़े हैं। लगातार जो प्रशासन है वो रामघाट के आसपास के इलाके में अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन इस तरफ हमें उस तरीके की अपील प्रशासन

0: We are very, very grateful to the international support because, national calamities, they don't see borders. You don't know where it's coming from and you don't know who's going to be hit. And, Nepal, we contribute very, very less to the global emission. Still, we are hardly hit. But the kind of support that we're getting from the international community is heartwarming. We've got support from India, our neighbor, our closest neighbor, and they've helped us with tons of material and relief operation and drones and technical support for the technical support also.
1: Well, I have no doubts in my mind that India is equally concerned, and I've seen this on multiple occasions. Even during the 2015 earthquake, India was the first one, Prime Minister Modi was the first one to come up with the immediate rescue arrangement, support, logistics. Even when our Prime Minister that time happened to be in Indonesia on a conference, but he immediately started acting. So I think India has that gained that prominence, gained that capacity, and gained that has the ability for given the scale at which India has been able to move, build the infrastructure. There has been a transformation in information quality of the infrastructure that India has been able to build over during the last 12 years. So the whole system is of a different level and caliber.
2: Well, let's take you to the ground in Dunche now. The search for the missing continues there, as families there are struggling to identify their loved ones. My colleague Sikta Dio spoke to Jeevan, who's still looking for his missing sister. Here's what Jeevan told NDTV.
3: मेरे साथ इस वक्त रसुआ जिले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं, उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहाँ से रिकवर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या
4: नहीं,
3: फैसला लिया?
4: वो संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
3: तो आपको पता है कि जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है.
4: हो सकता है.
3: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
4: हाँ, करवाना चाहिए. ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है. और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी.
3: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
4: करवाएंगे.
3: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं, या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकता है?
4: कुछ पता नहीं है ना, वही उसके के लिए तो लापता कहते हैं ना. यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ता पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है.
3: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
4: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं.
3: वो ठीक है?
4: ठीक है.
3: उनकी तबीयत ठीक है? उनको चोट आई थी?
4: नहीं.
3: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
4: नहीं, मैं घर पर था.
3: आप घर पे थे? आप भी शाहपुर बेसी में रहते थे?
4: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था. उसके बाद कॉल आया यहाँ से.

0: दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, हाँ ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। इतना सेवन डेज हो गया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
1: आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ है सैंपल, तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
0: जाएगा। वही
1: एक तरीका है
0: और कुछ नहीं है।
2: Alright, on that note, let's turn our attention now to Madhya Pradesh. Vast parts of Satna, Chitrakoot, they were left inundated after heavy rain caused a swell in the Menakeni River, which rose 6 meters over the danger mark just yesterday. Vast parts of the city were left submerged with an evacuation warning issued for Ramghat as well, and the NDRF was deployed to carry out rescue operations, while many citizens were left homeless after their life savings were just washed away in the floods. Officials say that residents have been shifted to a safer location. They are being provided with food and other necessities as we speak. Listen in to this crucial reaction we've just got.
3: इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं, जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनके गले तक पानी यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएं, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियां बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है, जहां पर हम मौजूद हैं तरोहा में, वहां पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं, जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है। लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा, तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है।
2: Alright, on that note, let's turn our attention to the latest we're tracking on NDTV this morning, with the BJP in Jammu and Kashmir announcing a secretariat gherao today to press for attention to recruitment and employment concerns. The ruling National Conference in Jammu and Kashmir has planned a counter move. The National Conference has said that it will hold a peaceful gherao of BJP offices in Srinagar and Jammu to demand accountability for the promises made by the Union Government in Parliament and before the Supreme Court with regard to Jammu and Kashmir. In fact, you must note that Sajid Yusuf, the BJP state co-media in charge, said that party leaders and workers, they will assemble at Clock Tower, Lal Chowk in Srinagar, from where they will march towards the civil secretariat. Reacting to the National Conference's move, the Leader of Opposition, Sunil Sharma, had also challenged Chief Minister Omar Abdullah to seek a fresh mandate from the people for restoration of statehood. So as the National Conference and BJP, they are set for rival protests in Jammu and Kashmir. Nazeer Masoodi joins us over the phone line. He's been tracking all the finer developments for us. Nazeer, we're given to understand to counter the protest against the Jammu and Kashmir government, Omar Abdullah's party now has a plan to gherao BJP offices.
4: Yeah, exactly. And now they are both sides are gathering, and BJP has announced to start their march from Lal Chowk, Srinagar, and then march towards the highest seat of the government in Jammu and Kashmir. And the protest, what they call backdoor appointments and corruption in the government. National Conference has hit back and they have announced the protest outside the offices of BJP in Srinagar as well as in Jammu. And a National Conference has asked its MLAs and also ministers to gather in Jawahar Nagar area of Srinagar and to hold protests outside the BJP office. So it is protests versus protests. And we have seen it here that the BJP has been actually preparing for this protest for last 1 or 2 months, and finally they have decided to hold this protest. Umar Abdullah has recently, when he was asked about these backdoor appointments and the corruption, and he said it shows the BJP is somewhere complicit, and since the anti-corruption bureau is under the central government, not with his government, the BJP should answer about the corruption charges in Jammu and Kashmir, not his government. So there are allegations and counter-allegations, but the fact is that these two simultaneous protests, BJP holding protests outside the secretariat, starting march from large of Srinagar, and the national conference, the government actually holding a counter-protest against the BJP, reminding the BJP its promise that it has promised to restore the statehood before the Supreme Court of India and before the Parliament of India.
2: Zira, as always, thank you so much for joining us with the latest details. We'll, of course, revert to you for regular updates regarding both these protests. All right, from Jammu and Kashmir, let's turn our attention now to the national capital. There is a significant forensic development in the Delhi-Kashmiri Gate bus rape case. Police have now confirmed that fingerprints belonging to the survivor and both accused men have been found on the bus. Investigators had also seized the clothes of the driver Kuldeep and conductor Sandeep and collected forensic samples from the seats and steering wheel, we're told. The DNA report is still awaited, which could provide another important piece of evidence as investigators reconstruct what happened inside that bus. The survivor had boarded after taking a lift from Pari Chowk in Noida on the 4th of August. Police are now preparing to file the charge sheet as well. Mukesh Sengar has been tracking all the finer developments for us. He joins us over the phone line at the moment. Mukesh, to begin with, break down what the fingerprint evidence tells investigators. And police are saying the charge sheet will be filed very soon. Are they waiting specifically for the DNA report before filing the charge sheet, or do they believe that they already have sufficient evidence to proceed?
5: देखिए दिल्ली पुलिस ने जो बस थी जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था बस के अंदर उस बस की फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई थी जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बस की स्टेयरिंग उसके जो सीट्स हैं वहां पर और बस के कई अलग अलग हिस्सों में जो फिंगरप्रिंट के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए थे और जो अभी रिपोर्ट आई है फिंगरप्रिंट की उसमें ये साफ हुआ है कि जो आरोपी एक्यूज संदीप और जो कुलदीप हैं उनके फिंगरप्रिंट बस की स्टेयरिंग में बस की सीट में विक्टिम के कपड़ों में मिले हैं इसके साथ ही पुलिस ने जो डीएनए सैंपल्स जांच के लिए भेजे थे वो डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट अभी अवेटेड है लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के पहले फिंगरप्रिंट का मिलना ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि आरोपी बस में मौजूद थे और विक्टिम भी बस के अंदर थी और आरोपी ने विक्टिम को टच किया था उसके कपड़ों में आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं तो दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है और पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल जो विक्टिम है वो अपने घर मैनपुरी में है लेकिन एक इस केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसमें ये साफ हो गया है कि बस के अंदर दोनों ही एक्यूज कुलदीप और संदीप का प्रेजेंस था दोनों बस के अंदर मौजूद थे और दोनों ने ही इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया है जी
2: Right, thank you for the confirmation, Mukesh, and sharing the latest details with us. We'll, of course, continue to track how this probe progresses. And from the national capital, now let's turn our attention to Mumbai, where a viral video is now at the center of a controversy over an alleged demand that two women remove their burqas before entering a BMC-run hospital. This incident is said to have taken place at Cooper Hospital, where the women were visiting a relative, we're told. The AIMIM Mumbai vice president was denied entry in the hospital and the party has now slammed this move, calling it a constitutional violation. For context, I must inform you, in the video, one of them, identified as advocate Zahra Sheikh, is seen objecting to what she says was a demand by a security guard to remove her burqa before entering. The security personnel reportedly cited security precautions and concerns over child theft. The incident has now taken a political turn as well, with Maharashtra Minister Nitesh Rane weighing in and defending restrictions on the burqa. He's citing concerns including bogus voting and child abduction. And Nitesh Rane has argued that India should reconsider such restrictions. AIMIM's Mumbai Vice President, though, Jehanara Sheikh, who says she was one of the women involved, says the guard told her that people wearing burqas could steal babies, believe it or not. She argues that if child security is a concern, the hospital should strengthen security around the maternity ward rather than ask women to remove their burqas. We do have political reactions lined up for you. Listen in to what played out, beginning with Jehanara Sheikh's reaction and then the political ones that followed.
6: मेरे रिलेटिव्स हैं

0: मिलने के लिए गई मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुरखा उतारे तो अंदर जाए। मैंने उनसे वजह पूछी कि बुरखा उतारने की वजह, मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी, मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोले बुरखा पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते। तो मैंने उनसे सवाल करी, बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है ना कि बुरखे वालियों का फॉल्ट है। एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा, उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है। आप
1: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं लोग, ये पूरा निंदनीय है, कंटेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ, हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
2: हिजाब और बुरखा पहन के तो बहुत सारे बहुत काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेजेस में रिपोर्ट किए जाते हैं। वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के हुआ होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
3: हारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहां उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पे अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। का बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
4: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
5: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
6: My colleague Sujata Dwivedi is tracking the latest details for us. She joins us live with the clarity we need at the moment. Sujata, we've just heard Jainara Sheikh saying the security guard specifically told her that babies are stolen when people wear burqas. Has the hospital officially clarified what happened? Nitesh Rane is now weighing in as well, claiming the burqas linked to bogus voting, child abduction, while the AIMIM is clearly slamming the BJP, calling them hate mongers and slamming them for their intolerance.
7: Well, certainly, and the kind of reactions that has come from several of these political leaders, it has only escalated the divide further, based right from an individual's dignity to religious freedom and its security. The hospital on one end, it has not yet clarified whether it is a part of the security protocol and the verification status that takes place usually outside of these government hospitals, or whether was it an individual call that was made by the security personnel is also a part of investigation. The Mumbai police has clarified that no such official complaint had reached them so far. And as far as the political reactions are concerned, like you mentioned, Nitesh Rane on one end is mentioning that not only child abduction and such incidents and bogus voting, but also in schools and colleges, we have seen that allowing burqa has led to incidents where copying-like incidents too have occurred. So somewhere Nitesh Rane clearly defending the incident here, but there are leaders like Waris Pathan, of course, Jahanara Sheikh, the victim who the woman in the video is a member of the same party, the AIMIM, and he says that this is clearly a way by the BJP to give such reactions and spread hatred, and they are opposing it. So at this point, it is

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: to follow the particular Islamic code. And there has been no condemnation. Unfortunately, this is the situation in Kerala. And certainly the voices are still rising against from the civil society side against the remarks made by Kanthapuram.
1: We'll of course continue to track all the reactions with you, Ashwin. As always, thanks so much. As my colleague Ashwin Nandakumar is highlighting, there has been restrained criticism coming in from several Congress members regarding the matter. All right, let's switch tracks to Mumbai now, where a viral video is now at the center of a controversy over an alleged demand that two women remove their burqas before entering a BMC-run hospital. In this video, one of them, identified as Advocate Zara Sheikh, is seen objecting to what she says was a demand by a security guard to remove her burqa before entering. One of them, AIMIM leader Jehanara Sheikh, says a security guard asked her to remove her burqa, citing concerns over baby theft. She's called the demand wrong and an attack on her religious freedom as well, as AIMIM's Waris Pathan has condemned the incident, calling it a violation of constitutional and religious rights. On the other hand, you must note though, Nitesh Rane, Maharashtra minister, however, has backed restrictions on burqas in public spaces, linking them to security and crime concerns, to child abduction, to exam malpractice. And the hospital, meanwhile, has issued a show cause notice to the security guard and started staff sensitization as well. Listen in to what Jehanara Sheikh has said about her experience, followed by the political reactions we've lined up for you.
2: मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए गई, मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुरखा उतारे तो अंदर जाए। मैंने उनसे वजह पूछी कि बुरखा उतारने की वजह, मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी, मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला बुरखा पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते हैं। तो मैंने उनसे सवाल करी, बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है, ना के बुरखे वालियों का फॉल्ट है। एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा, उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है। आप
3: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं ये लोग, ये पूरा निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ, हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
4: हिजाब और बुरखा पहन के तो काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेजेस में रिपोर्ट किए जाते हैं, वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के हुआ होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
5: वारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पे अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। का बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
6: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
7: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
1: ऑलराइट, ऑन दैट नोट नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू

0: Uttar Pradesh. The wait for the first full-time CEO of the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust could end today after a selection process that began with over 5,500 applications. The search committee has submitted a panel of three candidates to the trust. The names on that panel have not been officially disclosed. However, former Uttar Pradesh Cadre IPS officer Rajesh Pandey and also former Bihar Cadre IPS officer Paresh Saxena, they are among the names being discussed as possible contenders. As you know, whoever's appointed will take charge of the day-to-day administration of one of India's most significant religious institutions at a time when the trust is also facing greater scrutiny over financial management. So all eyes are on today's meeting in Ayodhya. Will the trust name its first CEO today? Or will the decision take longer? Well, that's the big question. And here are the reactions you need to listen to.
1: अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है. कल हमारे न्यास की बैठक में होगा. हम बहुत बहुत आभारी हैं इन तीनों महानुभावों के जो स्वयं अपने में अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इस कार्य को श्रद्धापूर्वक इतना समय देकर के करते रहे और आज उसका सुफल हम लोगों को प्राप्त हुआ है. मैं भगवान श्री राम जी के कृपाशीर्वाद के रूप में इनको प्रसाद अर्पित करना चाहता हूं, उसका भी वे स्वीकार करें.
2: 5,585 एप्लीकेशन हमें मिली तो उसकी फिर स्क्रूटनी की गई. उसमें हमने ये फैसला किया कि जो गूगल फॉर्म में 600 मार्क्स था, जो 7% के ऊपर लोग होंगे उनको ही हम कंसिडर करेंगे. तो उसकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन की गई तो 108 लोग जो उस कैटेगरी में आए, 108 लोगों को वर्चुअल इंटरेक्शन की वीडियो कॉन्फ्रेंस से और तकरीबन 4 दिन ये चला सिलसिला. तो उसमें से हमने 17 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट.
3: देखिए, जो राम मंदिर के सीईओ की बात है तो संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण संत समाज, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है. धार्मिक समिति में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, ना कि कोई बिजनेस का केंद्र है. तो और सीईओ जो होते हैं बिजनेस के केंद्र में होते हैं, आस्था के केंद्र में सीईओ की कोई आवश्यकता नहीं होती. उसके लिए धार्मिक समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर्याप्त है. राम मंदिर का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से कर सकता है. लेकिन दुर्भाग्य है कि सब सीईओ के पीछे पड़े हुए हैं. सीईओ इसलिए पड़े हैं कि जो अभी भ्रष्टाचार हुआ, जो अभी घोटाला हुआ, सीईओ होता तो सीईओ को ट्रांसफर हटा देते और दूसरा कोई वहाँ आ जाता, सीईओ के सामने मामला शांत हो जाता. आप देख सकते हैं भारत के जिन जिन मंदिरों में सीईओ है सभी जगहों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है. तो इसलिए सीईओ का पुरजोर विरोध है. राम मंदिर की जो समीक्षा बैठक हर महीने होती है, हो रही है, ये प्रशंसनीय है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए समीक्षा बैठक होती रहती है और होती रहनी चाहिए.
0: Alright, staying with updates from Uttar Pradesh, you must note that artificial intelligence has been weaponized ahead of the Uttar Pradesh election, with the ruling BJP accusing the Samajwadi Party of insulting Hindu saints with its latest video that references donation irregularities at the Ram Temple in Ayodhya and takes pot shots at Chief Minister Yogi Adityanath. The controversy began after the BJP released an AI video targeting Akhilesh Yadav, referring to him as Tipu and accusing him of corruption. Hitting back, the Samajwadi Party IT cell released a series of AI-generated videos targeting Chief Minister Yogi Adityanath and showing him smoking a chillum. Videos also reference the temple donation theft, as I mentioned, and show Chief Minister Yogi Adityanath counting cash. You know, in one video, Chief Minister Yogi Adityanath is shown dancing, as you can see, while targeting him over unemployment and paper leaks too. The BJP is slamming these videos as an insult to saints and the Sanatan tradition.
4: आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये खेल ना खेला जाए. लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी है उनके अकाउंट से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके वीडियो को AI से बना के प्रचारित किया जा रहा था. दुष्प्रचार किया जा रहा था, घटिया स्तर की राजनीति की जा रही थी। समाजवादी पार्टी समझती कि केवल समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चेताने के लिए, समझाने के लिए एक वीडियो जारी किया है। समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो AI टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके जिस तरह से विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं को बदनाम करना चाहती
5: है। Political values also, and Akhilesh Yadav now he was ex-chief minister also, and he is leading to some party, but he has, I think so, through his AI video, tarnished the values of the politics, and I don't think so, that people will forget him, because people have thousand lakhs people they have respect for any sadhu sant. And Yogi Adityanath ji, fortunately, he is a chief minister also, but he is a representing Gorakhpeeth also, where the lakhs of the people they have respect. Now it is in only mindset of Akhilesh Yadav that now for any sadhu and sant he has no respect. He has only image that if any sadhu sant used to only chillam, I think so. It is disgrace. He has disrespect for entire sadhu and sant also, and if he has some, I think so, he can oppose to government also policies, and he can criticize. I think so, people will give him, teach him lesson.
6: कि अखिलेश जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और 10 साल धीरे धीरे सत्ता गए हो गया, अब उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इस पे चर्चा करने के लिए इसके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि 10 साल से नाच देख नहीं रहे हैं। जो बॉम्बई से ला करके फिल्मी सितारों को नचाते थे, अब वो देख नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं बेचारे कि क्या करें। तो कभी बौना को नचा करके संतोष कर रहे हैं, तो कभी AI द्वारा वीडियो बना करके उसको चला के देख के संतोष कर रहे हैं। इसके अलावा तो उनके पास कोई इशू है नहीं। जो योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं, उनसे पहले तो वो अपने टीम में जरा झांक के देखें, उनकी टीम के लोग क्या कर रहे हैं।
0: Well, on that note, we're slipping into a very quick commercial break. We've got the latest updates lined up for you on the other side regarding the US-Iran conflict.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the

0: और उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का दुष्कर्म किया किसी बड़े नेता को बचाने के लिए। ये आरोप दिशा सैलियन के पिता के है। एक बाप से जाकर के पूछो बेटी खोने का दुख क्या होता है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा
1: सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपको लग रहा है कि अब सही से उनके द्वारा
2: इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके ऊपर कोर्ट भी सुपरविजन करेगी ना।
1: बिल्कुल,
2: इसके लिए।
1: और 6 साल तक जिस प्रकार की प्रताड़ना इसे कह सकते हैं हुई है, जहाँ पर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, अंततः आपको अदालत आना पड़ा, अब आपको थोड़ा सुकून लग रहा है, आप और आपकी वाइफ दोनों ही?
2: सुकून नहीं, मेरे को घर पे जाके रोना है।
1: सालियान यहाँ पर इमोशनल हो गए और वो कह रहे हैं कि उन्हें बस अब घर जाकर रोना है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी है इतने दिनों में, वो शायद ही कोई पिता झेले। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट देते हुए कहा है कि दिशा सालियान मौत मामले में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसकी पूरी तहकीकात करेगा और सीबीआई द्वारा अब इस पूरे मामले की आगे जाँच की जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
3: All right, so that's the breaking update we have. Satheer Salian speaking to NDTV, thanking the court for the verdict and says now he will go back home to cry. Of course, this has been a long pending case. Earlier, Mumbai police was investigating and Maharashtra government before the court had defended the initial police investigation with the public prosecutor really speaking about how material and witness statements did not indicate foul play or point to homicide, maintaining it was a case of a fall from building, after which of course the father approached the court and now this important verdict by the Bombay High Court. Let me go back to Sujata. Sujata, you know, Aditya Thackeray's name had come up in the petition. So, counsel appearing for Aditya Thackeray had also spoken during hearing, saying that this is completely politically motivated and father is, has become a tool in the hands of political rivals and so on. So, those are the defense by Aditya Thackeray. So, this is clearly a setback as far as a previous Maharashtra government is concerned, because it had maintained that it had done the investigation and it was nothing but an accidental death case.
1: Right. We have, like you mentioned, that there were several allegations that were come up, and we have the legal team that is representing Disha Salian in the case, his father. आपसे जानेंगे कि आज कोर्ट में सबसे पहले क्योंकि से वर्डिक्ट आना था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया उसके बाद उनके पिता इमोशनल हो गए, रो कर वो कोर्ट को थैंक यू बोल रहे थे। स्पेसिफिकली बताइए कि कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में क्या कहा है?
4: आज जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैडम, उसमें पहले तो पिटिशनर का स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करो और केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र करो। और जो मालवनी पुलिस स्टेशन ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें कुछ खामी थी और उसमें बहुत गलतियां थी, बहुत त्रुटि था, इसलिए वो चीज़ को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। और ट्रांसफ़र करने के बाद ये भी बताया कि अगर कोई रिपोर्ट नेगेटिव आता है सीबीआई का तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा।
1: यानी अगर इस इन्वेस्टिगेशन में अब जब सीबीआई द्वारा एक ऑफिसर इसमें अपॉइंट किया जाएगा, उनके द्वारा एक तहकीकात की जाएगी, अगर उसमें भी कुछ इन्हें लग रहा है कि सस्पिशियस है, डाउटफुल है, तो आप उसे भी चैलेंज कर सकते हैं।
4: दैट इज प्रोटेस्ट पिटीशन। यस, तो प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा हम उसको चैलेंज कर सकते हैं और सीनियर इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है सीबीआई के।
1: इतने सारे हाई प्रोफाइल नेम्स इस पूरे मामले में, आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या और सूरज पांचोली, ऐसे नाम, और साथ ही से पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी एक तरीके से कहा जा रहा था। आप क्योंकि 6 साल तक आपने दिशा सालियान के पिता के साथ समय निकाला है, सारी स्ट्रगल्स देखे हैं, क्या कुछ इसका क्रस्ट है ज़रा वो आप बता सकें? पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है?
4: पॉलिटिकली इसमें जो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है वो उनका है, वो इसमें इस मैटर को लेके अगर वो पॉलिटिकली इसमें इस मैटर को डैमेज करना चाहेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीवेंस है ये जेन्युइन ग्रीवेंस है, एक पिता का ग्रीवेंस है और वो 6 साल से वो इस चीज़ के लिए परेशान थे। आज जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया उससे उनको संतुष्टि मिली और वो इमोशनल भावुक होकर कोर्ट के सामने उन्होंने हाथ भी जोड़ा और वो सेटिस्फाइड है।
1: तो अब FIR फाइनली दर्ज होगा, ADR जो अब तक 5 साल से 6 साल से जिसकी जांच चल रही थी वो ADR अब हटेगा, लेकिन कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस है, कौन कौन से वो पहलू हैं जिस पे आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस हो और उस पे जांच हो?
4: कई चीज़ें हैं मैम, अभी तो उनके ही खुद रिकॉर्ड से आया है, CCTV फुटेजेस वगैरह का आप अगर नोटिंग देखेंगी तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। कल ओझा साहब जो हैं इस मैटर में काउंसिल हैं, उन्होंने जो आर्ग्यू किया वो मैटर में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है कोर्ट को, और सब कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड में है।
1: Yes. कोर्ट के रिकॉर्ड में है। और आप कह रहे हैं कि जो CCTV और जो दूसरे एंगल्स है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन इसे इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें कह दिया गया कि एक फाउल प्ले का एंगल जो है उसे रूल आउट कर दिया गया कि ये महज एक सुसाइड है, तो उसको लेकर भी तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक जाकर बिल्डिंग से कूदना, इसमें आपको क्या लग रहा है कि और कैसे ये मोटिवेटेड हो सकता
4: है? दिशा का फेस कहीं डैमेज नहीं है मैडम,
1: ठीक है,
4: और उनका कहना है कि वो दांत टूट गया, ये टूट गया, लेकिन उसका लिप्स वैसा ही है, उसका फेस वैसा ही है, स्कल जो है वो वैसा ही है, तो उसका कुछ डैमेज नहीं था बॉडी। और दूसरी चीज़, कोर्ट ने जब उनको क्वेश्चन किया तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं रहे।
1: अच्छा।
4: हाँ, उनको आंसर देने नहीं जमा।
1: किसको नहीं जमा?
4: को सरकार के।
1: अच्छा, पब्लिक
4: क्वेश्चन।
1: यस, यानी आप कह रहे हैं कि जो डिटेल्स रिपोर्ट किए गए थे वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं?
4: इनएक्यूरेट, यस। उसी ग्राउंड पे तो उन्होंने त्रुटि, और उन्होंने ये देखा कि वो बराबर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए तो CBI को ट्रांसफर किया ना उन्होंने।
1: और पिछले हियरिंग में भी हमने देखा था कि पुलिस को बहुत फटकार लगाई गई थी कोर्ट द्वारा कि उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन आखिर किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा।
4: नहीं, वो इशू ये हुआ था कि कोर्ट ने आदित्य ठाकरे के वकील जो हैं पासबोला साहब, उन्होंने उनके पिटीशन में ये था कि इस मैटर में, दिशा सालियान के मैटर में उसको क्लीन चिट दे दिया है CBI ने, लेकिन जब CBI के वकील को बुलाया गया तो CBI के वकील ने कहा कि नहीं, ऐसा हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। यस।
1: आपका नाम सर? और
4: अभिषेक मिश्रा।
1: तो आप अभिषेक मिश्रा को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर कौन कौन से वो पहलू है जिसको लेकर जांच करनी ज़रूरी थी, और अब जब CBI को ये पूरा केस ट्रांसफ़र किया गया है तो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की अपील यहाँ पर जो दिशा सालियान के पिता द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही थी वो अब जाकर पूरी होगी, और दिशा सालियान को इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज इनके पिता सतीश सालियान कोर्ट के बाहर निकले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ गलत हुआ है उसमें न्याय हो, और यदि CBI के इन्वेस्टिगेशन में ये कोई फ्लॉप आते हैं तो उसे भी ये बॉम्बे हाईकोर्ट में दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।
3: Right, Sujata, you just spoke to some of the lawyers and also Satish Salian as well. Now, if you can take us through the proceedings in the court, not today, but over the last several weeks when it was being heard by the Bombay High Court. And as you pointed out, High Court had slammed the investigation that had been conducted by the Mumbai police and repeatedly asked why, despite discrepancies raised by the father, no FIR was registered. So, therefore, Bombay High Court really inclined to sort of transfer the case to the CBI at this stage.
1: Well, absolutely. And on August 28, the court, it concluded its hearing and it had reserved its verdict for today. Now, before that, there was a multi-week hearing module that underwent in Bombay High Court. And during its hearing, the Bombay High Court took cognizance of this point that there were several of these cases that were undergoing. But as far as Disha Salian's case is concerned, a simple section that too in which an ADR was registered, why was it that an FIR was not registered in the case? The Bombay High Court raised this question with the investigating officers in this case, and thereafter the Bombay High Court today in its verdict had stated that based on all of the for all of the hearings and all of the points that have been heard, it is now clear that Satish Salian, the father of Disha Salian, who had taken this matter up in the Bombay High Court, the petitioner's statement first will be recorded by an investigating officer who will be appointed in this case for him to conduct a free and fair investigation, and that officer will be appointed by the CBI. So the CBI here is going to take up this matter in their own hands to figure out all of the important angles as far as Disha's death is concerned. Because when the incident happened back then in June 2020 in the ADR that was registered, there were several of these points that were mentioned in the ADR stating that several of the injuries and the marks on Disha's face that

0: कैन सतीश जी हियर बी?
1: बोलिए साहब, आ रहे आ रहे।
0: आप सतीश जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है,
1: बोलो,
0: रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑर्डर किया है। सतीश जी, आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिएक्शन क्या है? आपकी मांग थी कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो।
1: सही, मेरी मांग थी ऐसी, और मेरे वकील की मांग थी, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तुम इन्वेस्टिगेशन करो। हेलो,
0: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? सतीश जी, 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार, आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी के डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो, आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी, आपका क्या कहना है अभी?
1: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा। अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी की बात करो ना।
0: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
1: सौ टक आना चाहिए, आ सकती है कि आएगी सच्चाई, जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है।
0: और आप भी सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी सामनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
1: मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
0: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था? क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, एक कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
1: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉन्स्पिरेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फोटो देख के, अंतिम संस्कार का फोटो देख के आप भी बोल सकते हैं क्या है करके।
0: आप क्या, आप सीधा बताइए कि आपका क्या एलिगेशन है, कौन है ये बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे, किस टाइप का कवर अप था, सबका पूछना है?
1: अभी तो बताने, अभी नहीं बता सकता,
0: सबका पूछताछ होगा।
1: हाँ, सबका पूछताछ हो जाएगा,
0: तो आप किस,
1: जो भी है सच्चाई बाहर आ जाएगी।
0: तो आप किसको अक्यूज कर रहे हैं आप अभी, किस पर आरोप लगा रहे हैं आप अभी?
1: अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो भी है वो सामने आ जाएगा आपका।
0: एक पिता होने से के तरफ से सतीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम 2020 में क्या हुआ था कि ऐसे दिशा साली, आपकी बेटी की डेथ हो गई थी, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, लोग समझना चाहते हैं कि क्या कोई लिंक था इसमें?
1: 100% लिंक था, जो उन लोगों का जो गलत काम का दिशा ने वीडियो भेजा था, उससे सुशांत को भेजा था, उसके उससे लिंक है बस, और कुछ नहीं।
0: और आप जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, उनका नाम आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी सामने आएंगे अभी, उनको सामने आना पड़ेगा अभी सीबीआई के सामने?
1: आना ही पड़ेगा, जो गलत किया गलत मिलेगा उनको,
0: आपके हिसाब से
1: तरफ से नहीं तो ऊपर वाले की तरफ से भी मिलेगा।
0: आपके हिसाब से सतीश जी ये कवर अप क्यों हुआ है? दिशा सिर्फ एक 28 ईयर ओल्ड एक मैनेजर थी, वो कुछ भी नहीं थी ऐसा बॉलीवुड के इंडस्ट्री में, तो ये सब करना क्यों पड़ा आपकी तरफ से, आपके हिसाब से?
1: दिशा एक खुली दिमाग की लड़की थी, उसको अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने किया।
0: कौन सा अन्याय, ये तो बताइए कि कौन सा अन्याय, क्योंकि 6 साल हुए हैं सतीश जी, इसलिए हम जानना चाहते हैं।
1: वो आपको अभी आगे आ जाएगा यहाँ, अभी नहीं, अभी आगे आ जाइए, आगे आ जाएगा,
0: तो ये आप बताइए कि किस किस का पूछताछ होना चाहिए सीबीआई की तरफ से, किस किस का पूछताछ होना चाहिए?
1: वो तो सीबीआई करेगी, मेरा मुझसे मत निकालो प्लीज।
0: नहीं, मैं सिर्फ सतीश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 6 साल गुजर गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच होगा, फिर से शुरू होगा,
1: अभी 6 साल गुजर गए,
0: एक्सपेक्टेशन है
1: और 6 महीना रुको सब बाहर आ जाएगा।
0: आपको यकीन
1: जो न्याय है, जो गलत किया है उनको शिक्षा देना मिलना चाहिए।
0: लेकिन आपके हिसाब से अब तक न्याय नहीं मिला है, तो आपको कैसे यकीन है कि न्याय अब मिलेगा सतीश जी?
1: अभी तो मिला ना मुझे, 50% हाईकोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया केस को, एफआईआर मिला मुझे। अभी आगे भी हो जाएगा।
0: सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुइसाइड माना गया था सर,
1: वो गलत है, गलत है।
0: आपका मानना है कि वो भी रीइन्वेस्टिगेट होना चाहिए? आप बोल रहे कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है?
1: ठीक है, वो हाँ वो भी होना चाहिए।
0: ओके, सतीश सालियान जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। इट हैज बीन ओवर 6 years सिंस द डेथ ऑफ दिशा सालियान, 28 years ओल्ड। यू जस्ट हर्ड द फादर ऑफ दिशा सालियान सेइंग द ट्रूथ विल कम आउट। वेरी टेलिंगली ही सेज 6 months फ्रॉम नाउ द ट्रूथ विल एक्चुअली कम आउट। लेट्स ब्रिंग सुजाता इन टू द फ्रेम। सुजाता इज विद मी लाइव इज वेल। सुजाता, द सीबीआई टेक्स ओवर द केस नाउ, एन एफआईआर हैज बीन लॉज्ड by the Mumbai police. What happens next in terms of procedure? Who all are going to be summoned? Are we going to see political bigwigs being questioned by the Mumbai police now?
2: Well, certainly. Now, as per what the legal counsel of Satish and Disha Salian here in the case has said, that there will be a thorough investigation that will now be carried out by a senior officer that will be appointed by the CBI here. And like the Bombay High Court today in its verdict clearly stated that all of the consequences here in this case has to be studied by a senior officer. So now all the bigwigs, like you mentioned, in this case who have been named as accused will be questioned. But not only that, if we remember back then in 2023 in December, the SIT that was formed by the Maharashtra government, which was supposed to investigate the Disha Salian case, the head who was heading the SIT too will now be named as an accused in this very case, is what is being told by the legal representatives. And they are stating that all of the big names, including Dino Moria, Aditya Thackeray, Suraj Pancholi, and the bodyguard of Aditya Thackeray here, will be interrogated. They will be questioned once again as far as Disha's death is concerned, because subsequently, we remember back then when the case was, when the entire case came to light, it was just a few months after that the Malwani police station in its report stated that there has been no foul play that has been found and the case was put into bins. And that is when Disha Salian's father, Satish Salian, he went and he met the commissioner of police, and then he also approached the Bombay High Court, not only opposing the SIT's move and its findings, but also stating that a CBI inquiry should be formed. There was a multi-week hearing that took place at this very Bombay High Court, and that is when on August 28, the Bombay High Court it read and it also noticed that all of the investigation that was done by the Malwani Police Station was somewhere not of serious nature, and that there has to be more concrete findings that needs to be done. And the verdict was reserved, and today it has been announced by the Bombay High Court in its verdict that there will be a CBI inquiry into the case, and all of the evidences, all of the eyewitnesses in the case will be questioned again, and nobody has to be called an accused by until the IOFA, the investigating officer in the case, finds something more accurate. Over to you.
0: All right, thanks Sujata for getting us that update. The CBI takes up the case of Disha Salian. Will it be upheld as a suicide case, or will it be something else? NDTV will track all developments, all proceedings under the CBI and the Mumbai police very, very closely. We've got some breaking news coming in now from Tamil Nadu.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: इंसिव रिएक्शन क्या है? आपकी मांग थी कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो।
1: सही, मेरी मांग थी ऐसी और मेरे वकील की मांग थी, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया तुम इन्वेस्टिगेशन करो। हेलो,
0: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी सतीश जी? 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार, आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी की डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो, आपका क्या कहना है अभी जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा? अभी आपका क्या कहना है? अभी
1: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा। अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी की बात करो ना।
0: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
1: सौ टका आना चाहिए, आ सकती है कि आएगी सच्चाई, जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है।
0: और आप भी सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
1: मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
0: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था? क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
1: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉम्प्रेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फ़ोटो देख के, अंतिम संस्कार का फ़ोटो देख के आप भी बोल सकते क्या है करके।
0: आप क्या, आप सीधा बताइए कि आपका क्या एलिगेशन है, कौन है ये बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे, किस टाइप का कवरअप था, सबका पूछना है?
1: अभी तो बताने, अभी नहीं बता सकता,
0: सबका पूछताछ होगा।
1: हाँ, सबका पूछताछ हो जाएगा,
0: तो आप किस,
1: जो भी है सच्चाई बाहर आ जाएगी।
0: तो आप किसको अक्यूज कर रहे हैं, आप अभी किस पर आरोप लगा रहे हैं आप अभी?
1: अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो भी है वो सामने आ जाएगा आपका।
0: एक पिता होने से के तरफ से सतीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम 2020 में क्या हुआ था कि ऐसे दिशा साली, आपकी बेटी की डेथ हो गई थी, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, लोग समझना चाहते हैं कि क्या कोई लिंक था इसमें?
1: 100% लिंक था, जो उन लोगों का जो गलत काम का दिशा ने वीडियो भेजा था, उससे सुशांत को भेजा था, उसके उससे लिंक है बस, और कुछ नहीं।
0: और आप जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, उनका नाम आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी सामने आएंगे अभी, उनको सामने आना पड़ेगा अभी सीबीआई के सामने?
1: आना ही पड़ेगा, जो गलत किया गलत मिलेगा उनको,
0: आपके हिसाब से
1: तरफ से नहीं तो ऊपर वाले के तरफ से भी मिलेगा।
0: आपके हिसाब से सतीश जी ये कवर अप क्यों हुआ है? दिशा सिर्फ एक 28 ईयर ओल्ड एक मैनेजर थी, वो कुछ भी नहीं थी ऐसा बॉलीवुड के इंडस्ट्री में, ये सब करना क्यों पड़ा आपकी तरफ से, आपके हिसाब से?
1: दिशा एक खुली दिमाग की लड़की थी, उसको अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने किया।
0: कौन सा अन्याय, ये तो बताइए कि कौन सा अन्याय, क्योंकि 6 साल हुए हैं सतीश जी, इसलिए हम जानना चाहते हैं।
1: वो आपको अभी आगे आ जाएगा या अभी नहीं, अभी आगे आ जाएगा।
0: तो ये आप बताइए कि किस किस का पूछताछ होना चाहिए सीबीआई की तरफ से, किस किस का पूछताछ होना चाहिए?
1: वो तो सीबीआई करेगी, मेरा मुझसे मत निकालो प्लीज।

0: नहीं, मैं सिर्फ सतीश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 6 साल गुजर गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच होगा, फिर से शुरू होगा,
1: अभी 6 साल गुजर गए,
0: एक्सपेक्टेशन है
1: और 6 महीना रुको, सब बाहर आ जाएगा।
0: आपको यकीन
1: जो न्याय है, जो गलत किया है उनको शिक्षा देना मिलना चाहिए,
0: लेकिन आपके हिसाब से अब तक न्याय नहीं मिला है, तो आपको कैसे यकीन है कि न्याय अब मिलेगा सतीश जी?
1: अभी तो मिला ना मुझे, 50% हाईकोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया केस को, एफआईआर मिला मुझे, अभी आगे भी हो जाएगा।
0: सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुइसाइड माना गया था सर,
1: वो गलत है, गलत है।
0: आपका मानना है कि वो भी रीइन्वेस्टिगेट होना चाहिए? आप बोल रहे कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है?
1: ठीक है, वो हाँ वो भी है, होना चाहिए।
0: ओके सतीश सालियान जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। We've got breaking news coming in now. Tamil Nadu leader of the opposition Udayanidhi Stalin has now reacted on the Vijay government withdrawing cases against farmers and teachers, cases that had been imposed on them during protests under the DMK government. He says, one minister says, this is the first time in history cases have been withdrawn. That is not factually right. He says, during our government, headed by our leader, more than 5,000 cases were withdrawn against people who were booked for being part of protest against CAA. So there is competitive politics that has broken out now in Tamil Nadu over who has withdrawn more cases against protesters. So this is Udayanidhi Stalin. Let's just play out what he has said now.
2: ஒரு அமைச்சர் பேசும்பொழுது இதுதான் வரலாற்றிலே முதல் முறை வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அது சரியான தகவல் அல்ல. எங்களுடைய தலைவர் எங்களுடைய ஆட்சியின் போது குடியுரிமை திருத்த சட்டம், வேளாண் சட்டம், 8 வழிச்சாலை போராட்டம், கூடன்குளம் அணு உலை, அண்ணன் அமைச்சர் அண்ணன் வன்னியரசன் சொன்னது போல கூடன்குளம் அணு உலை, ஹைட்ரேன் மீத்தேன் போராட்டம் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போடப்பட்ட 5,000 மேற்பட்ட வழக்குகளை எங்களுடைய தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது வாபஸ் பெற்றிருக்கிறார். ஒன்றே ஒன்று மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அப்பொழுது எங்களுடைய தலைவர் முதலமைச்சர் அவர்கள் 110 விதியின் கீழ் அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை. அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு இந்த வழக்குகளை வாபஸ் சென்று இந்த அவையில் தெரிவித்தார்.
0: Sam Daniel joins me live from Chennai. Sam, what are you making of this, the withdrawal of the cases by the Vijay government, and Udayanidhi saying it's no big deal? You know, don't try to take credit for something like this. Withdrawal of cases against protesters have happened before. It's almost competitive now.
3: Shiv, absolutely, it is competitive politics. It could be seen in two different ways. One, it's a new government, and the chief minister is yet to really understand what are the cases in terms of dropping of cases by his government could be highlighted as something first of its kind. And it's that kind of a claim, that unprecedented word, historical word used by the chief minister, had touched a raw nerve. And Udayanidhi Stalin, the leader of opposition, immediately rose and they were up in arms, saying that even during the DMK regime, MK Stalin as chief minister had quashed cases against farmers and teachers, particularly referring to instances like the long-drawn protests against the Kudankulam power plant in southern Tamil Nadu at that point in time, and also farmers who protested against a few industrial projects in, for instance, in Thiruvannamalai district of Tamil Nadu, saying that it cannot be called first of its kind. And the larger picture, of course, it's a 3-month-old government, and they want to take brownie points. And this becomes all the more important for the DVK, particularly because the message, the speeches, the proceedings from the floor of the house are streamed live. And it could be an easy way for them also to score brownie points. But the opposition has learnt its lessons. And during every such opportunity, they also come out strongly rebutting to make sure they're not seen at the receiving end.
0: Sam, thanks very much for that. I'm sure we're going to hear much more about this from both the TVK and the DMK, and that's only to be expected. Thanks very much, TSM.

0: पहले से चलता है, जब से इनके हेड सर की बहू आई हैं वो ज़्यादा पनिशमेंट देती हैं सबको।
1: तो तीसरी मंजिल से कहीं उसने छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई है। बीके के में उसकी यहाँ डेड बॉडी रखवाई हुई है। अभी उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन, ये अभी जांच का विषय है, क्या वजह रही अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है।
2: A politician wearing a burqa, not being allowed to enter a hospital in Mumbai, has, as you can imagine, triggered a big, big firestorm in the city. A viral video showing two women being stopped at a BMC-run Cooper Hospital in Mumbai while visiting a relative is now the big face of the story. One of them is AIMIM, that's Asaduddin Owaisi's party, an AIMIM leader, Jahanara Sheikh, wearing a burqa, who says a security guard asked her to remove her burqa, citing concerns over baby theft. She has called the demand wrong and an attack on her religious freedom. AIMIM leader Waris Pathan has condemned the incident, calling it a violation of constitutional and religious rights. Maharashtra Minister Nitesh Rane, however, has backed restrictions on burqas in public spaces, linking them to security and crime concerns. The hospital has issued a show cause notice to the security guard and started a staff sensitization drive.
3: मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए गई, मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुरखा उतारे तो अंदर जाए। मैंने उनसे वजह पूछी कि बुरखा उतारने की वजह, मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी, मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला बुरखा पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते। तो मैंने उनसे सवाल करी, बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है, ना के बुरखे वालियों का फॉल्ट है। एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा, उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है। आप
4: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं लोग, ये पूरा निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ, हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
5: हिजाब और बुरखा पहन के तो बहुत सारे काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेजेस में रिपोर्ट किए जाते हैं। वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के हुआ होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
6: वारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पे अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
7: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
8: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
2: Crumbling infrastructure is once again under the spotlight, this time in Uttar Pradesh, as heavy rain exposes the vulnerability of roads across the state. Remember, elections are coming in just a few months from now. In Kanpur, a road caved in following heavy rainfall, raising questions over road quality, drainage and monsoon preparedness. and in the capital.

0: of the state, Lucknow, a road collapsed with a bike plunging into a pit. Just look at these pictures. The incidents have sparked fresh concerns over the condition of roads and whether civic infrastructure in our cities is equipped to handle heavy monsoon showers. That, of course, is a rhetorical question, as these stories attest.
1: लखनऊ विश्वविद्यालय से आईटी चौराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पे सड़क धसी है, दुर्घटना हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये बीच सड़क में हुआ गड्ढा है, आईटी चौराहे से पहले जो ये मुख्य रास्ता है वहाँ सड़क धसी है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आवाज भी ठीक इसके सामने है। ये 10 फीट के आसपास गहरा गड्ढा यहाँ पर हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पर गहराई सड़क में दिखाई दे रही है, गड्ढा है यहाँ पर। इस गड्ढे में एक बाइक गिरी थी, 2 लोग सवार थे, जो बाइक चला रहा था वो घायल हुआ और एक उसके साथ और व्यक्ति था, घायल को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। अब आप देखेंगे इस समय इस गड्ढे को पाटने का सिलसिला जारी है। LDA और लखनऊ नगर निगम की टीमें पहुंची हैं, मलबा पहुंचाया गया है और गड्ढे में डाला जा रहा है। तो भारी बारिश का असर है लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर गड्ढों की समस्या है और मुख्य शहर के अंदर लखनऊ के बीच सड़क में बारिश के बाद एक बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसमें एक बाइक गिरती है और व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
2: कल हम लोग रात को आ रहे थे, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, एक बैरियर थोड़ा हटा था, ठीक है, और बैरियर की वजह से बैरियर हटा था इसीलिए पानी तेज बरस रहा था, तो हम लोग ने गड्ढा देखा नहीं, इतना बड़ा गड्ढा था और हम लोग उसी में लड़के गिरे। मेरा भाई बेहोश हो गया था, हम तो गड्ढे में ही पड़े थे, हमको किसी ने निकाला, फिर अपने छोटे भाई को होश उठा लिया। मैं था, मेरा छोटा भाई था।
3: अच्छा, तो कितनी देर कोई पुलिस पुलिस वाले आए थे साथ में?
2: हाँ, आए थे, 10-15 मिनट बाद आए थे, आ गए।
3: चोट कैसे लगी आपको?
2: चोट हम लोग गाड़ी से ही, तो इसे यहीं तो चोट लगी है।
0: And that's the reason why NDTV continues its campaign of Our Cities, Our Fight. You will forget that biker you just heard from, but the campaign for safer and more accountable cities will continue right here on this network. Moving on, the wait for Ayodhya's Ram Temple's first CEO may be over. The search committee's report on the temple's first ever CEO has been submitted and it lands before the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust today. Over 5,500 applicants for the post after weeks of tests and interviews, it's down to just 3 names. Former UP Cadre IPS officers Rajesh Pandey and former Bihar Cadre IPS officer Paresh Saxena among the front runners. With the trust meeting today, all eyes are on Ayodhya and whether the names of the new CEOs or at least a down selected list will be announced today.
4: अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए CEO की नियुक्ति करनी है, कल हमारे न्यास की बैठक में होगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं इन तीनों महानुभावों के, जो स्वयं अपने में अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इस कार्य को श्रद्धापूर्वक इतना समय देकर के करते रहे और आज उसका सुफल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं भगवान श्री राम जी के कृपाशीर्वाद के रूप में इनको प्रसाद अर्पित करना चाहता हूं, उसका भी वे स्वीकार करें।
5: 5,585 से एप्लीकेशन हमें मिली तो उसकी फिर स्क्रूटनी की गई। उसमें हमने ये फैसला किया कि जो गूगल फॉर्म में 600 मार्क्स था, जो 7% के ऊपर लोग होंगे उनको ही हम कंसिडर करेंगे। तो उसकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन की गई तो 108 लोग जो उस कैटेगरी में आए, 108 लोगों को वर्चुअल इंटरेक्शन की वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और तकरीबन 4 दिन ये चला सिलसिला। तो उसमें से हमने 17 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट।
6: देखिए, जो राम मंदिर के CEO की बात है तो संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण संत समाज, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। धार्मिक समिति में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, ना कि कोई बिजनेस का केंद्र है। तो और CEO जो होते हैं बिजनेस के केंद्र में होते हैं, आस्था के केंद्र में CEO की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए धार्मिक समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर्याप्त है, राम मंदिर का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सब CEO के पीछे पड़े हुए हैं। CEO इसलिए पड़े हैं कि जो अभी भ्रष्टाचार हुआ, जो अभी घोटाला हुआ, CEO होता तो CEO को ट्रांसफर हटा देते और दूसरा कोई वहां आ जाता, CEO के सामने मामला शांत हो जाता। आप देख सकते हैं भारत के जिन जिन मंदिरों में CEO है सभी जगहों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इसलिए CEO का पुरजोर विरोध है। राम मंदिर की जो समीक्षा बैठक हर महीने होती है, हो रही है, ये प्रशंसनीय है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए समीक्षा बैठक होती रहती है और होती रहनी चाहिए।
0: And political heat is rising in Jammu and Kashmir with the BJP hitting the streets against the Omar Abdullah government. The BJP is targeting the government over alleged corruption, governance failures and unemployment, asking where are the jobs promised to the youth. Omar's party has hit back with a counter protest, turning its fire on the center. The National Conference is demanding the restoration of Jammu and Kashmir's statehood and questioning the delay in fulfilling that promise.
7: Well, BJP march from Lal Chowk to Civil Secretariat Srinagar was stopped at Jahangir Chowk. Hundreds of BJP protesters were shouting slogans against Omar Abdullah government, but at Jahangir Chowk they were stopped and they were pushed back to Lal Chowk again. Now you, as you can see, these workers, they talk about merit ka qatl band karo, corruption ka hisab do, 200 free units which promise made by Omar Abdullah, and power is basic, not a luxury, and they are actually asking roll, they are saying roll back the power hike also. Protest against protest by BJP versus National Conference here in Srinagar. One, protesting against what they call backdoor appointments and corruption. Second, protesting for the restoration of 370 and statehood.
8: Protest versus protest politics has started here in Jammu and Kashmir to counter protest by Bharatiya Janata Party. You can see National Conference has also started a counter protest. They are trying to grow BJP office both in Jammu as well as in Kashmir. They are trying to remind BJP of not fulfilling their promise of giving statehood to Jammu and Kashmir. And that's one of the reasons that you can see they're holding placards in their hand. BJP failed to raise the voice of people of Jammu and Kashmir. The protest demonstration continued and they are moving towards fast. They are moving towards right now towards the BJP office. They are trying to get out this BJP office. And here you can see the protest versus protest demonstration continuing. And here right now the National Conference steadily moving towards the BJP office. Just few meters away from BJP office, they are raising slogans against the BJP. And here the protest demonstration is continuing. And here they are trying to get out office. Protest demonstration here is continuing. And here you can see the protest versus protest demonstration is on. Pradeep Datta with Neeraj Kumar for NDTV.
0: We've got much more coming up on the other side of this very short break. Stay with NDTV.

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अ सेकंड चेंजेस एवरीथिंग, अ मिनट मूव्स अ नेशन, एन आवर बिकम्स हिस्ट्री फॉर थ्री डेकेड्स। NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.

0: Achillam. Videos also referenced, as I said, the temple donation theft, and even showed him counting cash in that AI-generated video. And then another video, Yogi was shown dancing while targeting him over unemployment and paper leaks. So there you can see these videos. We're going to see more of them in the coming days. The BJP has slammed these videos as an insult to saints and the Sanatan tradition.
1: आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये खेल ना खेला जाए. लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी है उनके अकाउंट से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके वीडियो को AI से बना के प्रचारित किया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था, घटिया स्तर की राजनीति की जा रही थी. समाजवादी पार्टी समझती कि ये केवल समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चेताने के लिए, समझाने के लिए एक वीडियो जारी किया है. समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो AI टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके जिस तरह से विपक्ष को बदनाम करना चाहती है, विपक्षी नेताओं को बदनाम करना चाहती
2: है. Political values also, and Akhilesh Yadav, now he was ex-chief minister also, and he is leading to some party, but he had, I think so, through his AI video, tarnished the values of the politics, and I don't think so, that people will forget him, because people have thousand lakhs people, they have respect for any sadhu, sant. And Yogi Adityanath ji, fortunately, he is a chief minister also, but he is a representing Gorakh Peet also, where the lakhs of the people, they have respect. Now it is in only mindset of Akhilesh Yadav ki now for any sadhu and sant he has no respect. He has only image ki if any sadhu sant used to only chillam, I think so it is disgrace. He has disrespect for entire sadhu and sant also, and if he has some, I think so, he can oppose to government also, policies, and he can criticize. I think so, people will give him, teach him lesson.
3: Thank you. अखिलेश जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और 10 साल धीरे धीरे सत्ता गए हो गया. अब उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इस पे चर्चा करने के लिए इसके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि 10 साल से नाच देख नहीं रहे हैं. जो बॉम्बई से ला करके फिल्मी सितारों को नचाते थे, अब वो देख नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं बेचारे कि क्या करें. तो कभी बौना को नचा करके संतोष कर रहे हैं, तो कभी AI द्वारा वीडियो बना करके उसको चला के देख के संतोष कर रहे हैं. इसके अलावा तो उनके पास कोई इशू है नहीं. जो योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं, उनसे पहले तो वो अपने टीम में जरा झांक के देखें, उनकी टीम के लोग क्या कर रहे हैं.
0: Alright, some breaking news now coming in, and the BJP has hit out at Swara Bhaskar over the storm over her comments on Jauhar that she had made recently at an event in Delhi when she revisited an open letter that she had written to the maker of the film Padmavat, Sanjay Leela Bhansali, and she explained why she had got angry over the representation of Jauhar and how thousands of women were shown committing Jauhar, and she said that she questioned that, and now it has become a big controversy. The BJP also commenting on it, saying that Swara strikes a discordant note, and so hitting out at Swara and says Swar Bigda, that was the barb at the BJP spokesperson made at Swara Bhaskar speaking on it. Let's just listen into what he said.
4: ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है जिनका स्वर बिगड़ा हुआ है और कहते हैं कि उनका भी वही स्वर है जो उनको ऊपर से बता के भेजा जाता है. मैं समझता हूं इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और यह जरूरी है कि हर महिला को दूसरी महिला का सम्मान करना चाहिए.
0: So let's just listen in to what Swara Bhaskar had to say when she was speaking at this event in Delhi.
5: Watching this, and it's all these 800 women, which is the story, committing Jauhar. I was watching it and I was like, yaar,

0: To be inbred, they are supposed to be inside the house, they are meant to be breeding kids, and so many similar statements both by the Grand Mufti and also by his son. This was called out, and the silence of Rahul Gandhi and certainly of Priyanka Gandhi not talking about smashing patriarchy in Kerala when some statements like this has come to the fore, the silence of them has been questioned by the BJP. But saying that, very refreshing to see that unlike the ministers in the Kerala cabinet who has been very restricting their criticism, the chief minister took a very bold stance, took on Kanthapuram's statement. He said such kind of statement only belongs to 19th century, does not belong to the aspiration of 21st century, and that women play an equal role in the society is what chief minister said today. But the chief minister will have to balance it out, because the primary ally, the Muslim League, which holds a very close connection with this Mufti, will have to now play the politics around it. They have to balance it. Certainly the Muslim League has been very soft peddling it. They didn't criticize the Mufti, and certainly the chief minister will have his internal troubles is what we are getting to pick up from some of the sources. But seeing that, chief minister put a stand out very clearly that this kind of statement does not belong to 21st century.
1: Absolutely, saying this does not belong to this century. This is a very outdated and archaic, you know, point of view. Ashwin, do stay on with us. Some breaking news also coming in now, and the Students Federation of India has staged a march to the Keralam Secretariat, and they have been protesting over the manhandling of student leaders during a protest in the Kerala University. So this is a march to the Keralam Secretariat in Thiruvananthapuram, alleging and protesting this police assault on its student leaders, including Central Committee member Arya Prasad and State Secretariat member Vaishnavi Shaji, during a demonstration at Kerala University. The protest comes a day after a clash broke out at an SFI march in the to the University of Kerala, where the student organizations alleged that police personnel used excessive force against its members. Well, let's go back to Ashwin for more on this story now. And it's, you know, police versus students showdown, Ashwin, taking place. We can see those visuals, you know, water cannons also used against the protesting students. Take us through all the details. All right, we will try and reconnect with Ashwin there. But this protest march coming today, as the Students Federation of India staging this march to the Keralam Secretariat in Thiruvananthapuram, protesting the alleged police assault on its student leaders, which took place earlier, and including the Central Committee member Arya Prasad and State Secretariat member as well. The protest coming a day after the clash broke out at an SFI march to the University of Kerala. All right, moving on now to other news. News from Mumbai, where a burqa entry row has erupted. Now, a viral video allegedly shows two women being stopped at the BMC-run Cooper Hospital while they were visiting a relative. And one of them, AIMIM leader Jahanara Sheikh, says the security guard asked her to remove her burqa, citing concerns over baby theft. Now, she has called the demand wrong and an attack on her religious freedom. AIMIM leader Waris Pathan also condemned the incident, calling it a violation of constitutional and religious rights. Maharashtra Minister Nitesh Rane, however, has backed the restriction on burqas in public spaces, linking them to security concerns and crime. The hospital has now issued a show cause notice to the security guard and started staff sensitization.
2: मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए गई मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुर्का उतारे तो अंदर जाए मैंने उनसे वजह पूछी कि बुर्का उतारने की वजह मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोले बुर्का पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते तो मैंने उनसे सवाल करी बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है ना के बुरखे वालियों का फॉल्ट है एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है आप
3: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं लोग? ये पूरा निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ। हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
4: हिजाब और बुरखा पहन के तो बहुत सारे बहुत काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेजेस में रिपोर्ट किए जाते हैं। वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
5: पारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पे अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। का बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
6: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
7: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
1: All right, there's been a development in Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian's death case. The Bombay High Court has now ordered an FIR and a CBI probe, raising fresh questions over the Mumbai police investigation and handling of the case. The ruling triggered a political attack, with the BJP targeting the then Uddhav Thackeray government, questioning why the death was not independently probed and whether anyone was being protected. Now remember, Disha Salian died in June 2020 after she fell from the 14th floor of a building. The police later closed the case as suicide, but then 6 years on, the High Court ordered a CBI probe. Disha's father, Satish Salian, spoke to NDTV saying he has faith that the truth will emerge.
8: आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन में फ़ोन रिकॉर्ड डिनो मौर्य का, उनका फ़ोन टैपिंग किया। ये नारकोटिक्स ब्यूरो के फाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का रिकॉर्ड नहीं है। तो वो उसके जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार वाले जो भी आरोप थे, जो भी कुछ था, वो उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन किया था दिशा ने, वो कॉपी हैंड ओवर की उसने सुशांत सिंह राजपूत को। तो उसके बाद में उन्होंने सचिन वाजे को वगैरह लाकर प्लान करके दिशा का गैंगरेप किया, मर्डर किया, बाद में 8 तारीख को ये सब किया और फिर 9 तारीख का स्टोरी क्रिएट किया कि अरे वो ऊपर से गिर गई।
9: आखिर दिशा सालिन के परिवार को न्यायपालिका ने न्याय दे दिया। भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा। अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा।
1: All right, so now the Disha Salia death case will be handed over to the CBI. NDTV's Shivarur spoke to Disha Salia's father, who said that he is hopeful that the truth in his daughter's death will finally emerge.
10: Satish ji, Bombay High Court ne ek CBI investigation order kiya hai.

0: कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार, आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी के डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो, आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी आपका क्या कहना है अभी?
1: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा। आज अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी की बात करो ना।
0: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
1: सौ टक आना चाहिए, आ सकती है कि आएगी सच्चाई, जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है।
0: और आप भी सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
1: मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
0: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था, क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
1: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉन्स्पिरेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फोटो देख के, अंतिम संस्कार का फोटो देख के आप भी बोल सकते हैं क्या है करके।
0: आप क्या, आप सीधा बताइए कि आपका क्या एलिगेशन है, कौन है ये बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे, किस टाइप का कवर अप था, सबका पूछना है?
1: अभी तो बताने, अभी नहीं बता सकता,
0: सबका पूछताछ होगा।
1: हाँ, सबका पूछताछ हो जाएगा,
0: तो आप किस,
1: जो भी है सच्चाई बाहर आ जाएगी।
0: तो आप किसको अक्यूज कर रहे हैं, आप अभी किस पर आरोप लगा रहे हैं आप अभी?
1: अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो भी है वो सामने आ जाएगा आपका।
0: एक पिता होने से के तरफ से सतीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम 2020 में क्या हुआ था कि ऐसे दिशा साली, आपकी बेटी की डेथ हो गई थी, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, लोग समझना चाहते हैं कि क्या कोई लिंक था इसमें?
1: 100% लिंक था, जो उन लोगों का जो गलत काम का दिशा ने वीडियो भेजा था, उससे स्वयं सुशांत को भेजा था, उसके उससे लिंक है बस, और कुछ नहीं।
0: और आप जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, उनका नाम आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी सामने आएंगे अभी, उनको सामने आना पड़ेगा अभी सीबीआई के सामने?
1: आना ही पड़ेगा, जो गलत किया गलत मिलेगा उनको,
0: आपके हिसाब से,
1: तरफ से नहीं तो ऊपर वाले के तरफ से भी मिलेगा।
0: आपके हिसाब से सतीश जी ये कवर अप क्यों हुआ है? दिशा सिर्फ एक 28 ईयर ओल्ड एक मैनेजर थी, वो कुछ भी नहीं थी ऐसा बॉलीवुड के इंडस्ट्री में, ये सब करना क्यों पड़ा आपकी तरफ से, आपके हिसाब से?
1: दिशा एक खुली दिमाग की लड़की थी, उसको अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने किया।
0: कौन सा अन्याय, ये तो बताइए कि कौन सा अन्याय, क्योंकि 6 साल हुए हैं सतीश जी, इसलिए हम जानना चाहते हैं।
1: वो आपका अभी आगे आ जाएगा न्याय, अभी नहीं, अभी आगे आ जाइए, आगे आ जाएगा।
0: तो ये आप बताइए कि किस किस का पूछताछ होना चाहिए सीबीआई की तरफ से, किस किस का पूछताछ होना चाहिए?
1: वो तो सीबीआई करेगी, मेरा मुझसे मत निकालो प्लीज।
0: नहीं, मैं सिर्फ सतीश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 6 साल गुजर गए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच होगा, फिर से शुरू होगा,
1: अभी 6 साल गुजर गए,
0: एक्सपेक्टेशन है
1: और 6 महीना रुको, सब बाहर आ जाएगा।
0: आपको यकीन,
1: जो न्याय है, जो गलत किया है उनको शिक्षा देना मिलना चाहिए।

0: लेकिन आपके हिसाब से अब तक न्याय नहीं मिला है, तो आपको कैसे यकीन है कि न्याय अब मिलेगा सतीश जी?
1: अभी तो मिला ना मुझे, 50% हाईकोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया केस को, एफआईआर मिला मुझे। अभी आगे भी हो जाएगा।
0: सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुइसाइड माना गया था सर।
1: वो गलत है, गलत है।
0: आपका मानना है कि वो भी रीइन्वेस्टिगेट होना चाहिए? आप बोल रहे कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है?
1: ठीक है, वो हाँ वो भी होना चाहिए।
0: ओके, सतीश सालियान जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद।
2: All right, with that, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: में आप फोकस ऑन द बिग न्यूज, अ मेजर टर्न इन सुशांत सिंह राजपूत्स मैनेजर दिशा सालियांस डेथ केस. The Bombay High Court has now ordered an FIR and a CBI probe, raising fresh questions over the Mumbai police investigation and the handling of the case. The ruling has triggered a political attack, with the Bharatiya Janata Party targeting the then Uddhav Thackeray government, questioning why the death was not independently probed and whether anyone was being protected or not. Disha Salian died in June 2020 after falling from a 14th floor building. The police later closed the case as suicide. 6 years on, the Bombay High Court has now ordered a CBI probe. Disha's father, Satish Salian, exclusively spoke to NDTV and said that he has faith that the truth will emerge. He maintains his daughter did not die by suicide and alleges powerful people were behind her death.
1: आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन में फोन रिकॉर्ड डिनो मौर्या का, उनका फोन टैपिंग किया. ये नारकोटिक्स ब्यूरो के फाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का रिकॉर्ड नहीं है. तो वो उसके जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार वाले जो भी आरोप थे, जो भी कुछ था, वो उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन किया था दिशा ने. वो कॉपी हैंड ओवर की उसने सुशांत सिंह राजपूत को. तो उसके बाद में उन्होंने सचिन वाजे को वगैरह लाकर प्लान करके दिशा का गैंगरेप किया, मर्डर किया. बाद में 8 तारीख को ये सब किया और फिर 9 तारीख का स्टोरी क्रिएट किया कि अरे वो ऊपर से गिर गई.
2: आखिर दिशा सालियन के परिवार को न्यायपालिका ने न्याय दे दिया. भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है. अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए. इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है. सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया, उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा. अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी.

0: और मुकदमा दर्ज होगा।
1: 6 years later, the case has now been given to the CBI, and the Bombay High Court was also asked to file an FIR. Even an FIR wasn't filed back then. It's been 6 years. But let's now give you a lowdown of what this case is and all that you need to know about the Disha Salian case so far. It all happened in June 8th, 6 years ago, where she died after falling from a Mumbai high rise. The family alleges foul play. The family has also been seeking for a fresh probe. However, police say that there has been no FIR which was registered initially on her death. The SIT has found no foul play so far. And after 6 long years, the Bombay High Court has questioned the probe. That's why they've handed it over to the CBI and also questioned the FIR delay. Now, the Bombay High Court has ordered the CBI probe in this case. Meanwhile, Uddhav Thackeray, Uddhav faction leader Sanjay Raut, dodged all questions on the Bombay High Court order. Here's that sequence.
2: सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करने बोला सर बॉम्बे हाईकोर्ट में।
1: But 6 years on, as questions mount over the investigation, NDTV spoke exclusively to Disha Salian's father, who has been seeking answers for years. Here's what he said.
3: सतीश जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑर्डर किया है। सतीश जी, आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिएक्शन क्या है? आपकी मांग थी कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो।
4: सही, मेरी मांग थी ऐसी और मेरे वकील की मांग थी, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया तुम इन्वेस्टिगेशन करो। हेलो,
3: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी सतीश जी? 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार, आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी की डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो। आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी, आपका क्या कहना है अभी?
4: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा। आज अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी के बात करो ना।
3: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
4: सौ टक आना चाहिए, आ सकती है कि आएगी सच्चाई, जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है।
3: और आप भी सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
4: मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
3: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था? क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, एक कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
4: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉम्प्रेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फोटो देख के, अंतिम संस्कार का फोटो देख के आप भी बोल सकते क्या है करके।
1: And that's all that we could pack for you in today's edition of Prime 5, where we track all the stories that matter. Slipping into a very short break, but come right back. Coming up next is Nationwide.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर, जेके टायर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
3: Across the country,
2: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change.

0: is when Islam in the Quran, the Prophet Muhammad in his practice, Ahle Bayt in his family never spoke of such a thing. They give equal rights to women. They give equal rights during
1: Hajj. Okay, Tushar Gupta. Everyone has condemned it. Women from all walks of life have condemned it. B.D. Satishan has condemned it. That should be enough for you.
0: And the last 10 seconds.
1: You're politicizing it.
0: 10 seconds. And when we come to holding on to an ally saying something or not saying something, why do we always hold on to Rahul Gandhi? Why not to a Modi for the statement of Yogi Adityanath, Kailash Vijayvargiya, Ramesh Biduri?
1: Okay, 30 seconds, Turi, and I respond, then I want to bring in Vivek Srivastava.
2: Can I say it, Asad, Rahul Gandhi is running the program on smashing the patriarchy.
3: Can I, it's not anyone else.
2: Rahul Gandhi was the one who was congratulating the world on the government formation in Kerala. Why is he silent today? It's Rahul Gandhi because he has all the time to attack Manu Smriti but not talk about the cleric here. Why?
0: The same answer. I'd like to answer, my friend Tushar. Yeah, same point. Tushar, my dear friend. Holding on to the same point. You think Adarniya Pradhan
2: Mantri. Will Rahul Gandhi back triple talak?
0: I will answer.
2: Will Rahul Gandhi back UCC?
0: My dear friend has asked me a question, Tushar Gupta. Tushar Gupta, my friend, you raised the question.
2: Yes, sir.
0: Allow me to answer. Yes,
1: okay. You know, let me do a simple apples-to-apples comparison, Vivek Srivastava. When you say smash patriarchy, Rahul Gandhi and the Congress did not hold back. They did not mince their words. They did not pull their punches. They said Manu Smriti is the symbol of patriarchy. And this is the language of the BJP RSS. This patriarchy must be smashed. Apples-to-apples comparison. Do you think that what the Grand Mufti has said is the symbol of patriarchy and this patriarchy must be smashed?
4: Absolutely. One Mr. Abu Bakar Musalayar, who is the Grand Mufti in Kerala, wo nonsense bol rahe hain. I am a very outspoken man. I don't mince words. I speak rough. Wo nonsense bol rahe hain. Bakwas bol rahe hain. Koi unki sun nahi raha. Is desh ka musalman. Aap, dekhe, Sayyed,
1: are you ML sun rahe?
4: My friend. He's a well-to-do Muslim. He's an educated Muslim. So, you know, Tuhin will say and Tushar will say, Arey, tu padha likha aadmi hai. What is Tushtikaran?
1: No, but he doesn't have to contest elections. No, Sayyed Asad Abbas has to say all, can say all of this because he's not contesting elections, at least in the near future.
4: Listen to me.
1: When he does go back to contest from South Bangalore, who knows, he will also find that women just like jewelry should be kept in a little box.
4: I'm saying a different thing. I'm saying the point that Tuhin and Mr. Tushar Gupta will say, ye to padha likha musalman hai sahab. Iski baat mat karo, baaki musalmanon ki baat karo. I will now quote it to you. Bawana, it's a place in North Delhi, 33,000 Muslim votes. Garibon ke votes hain, wo mahilayein maid servants hain, factoryon mein kaam karti hain. And that is the kind of a workforce you have. Aur unke sabke bachche, sari ladkiyan padh rahi hain. Patanjali, I have gone over there. As a
5: traditionalist,
4: और ये मुफ्ती शुफ्ती वहाँ पे आएंगे ना, वो मुसलमान बच्चों की माएं उनको कल भगा देंगी. What तुष्टीकरण?
1: आप great. So what's happening in Bawana? Why can't it happen in Kerala? I'm so happy you quoted that example of Bawana because it's terrible to ghettoize any community and say women of that community should be kept in a box to keep them safe. What can happen in Bawana? Why can't it happen in Kerala?
4: आप मेरा पॉइंट नहीं समझी हैं. मैं ये कह रहा हूं मुसलमान आवाम ने ऐसे मुफ्तियों को डिनाउंस कर दिया है.
1: अरे आवाम ने तो कर दिया है पर नेता क्यों नहीं कर रहे दोस्त? आवाम तो हमेशा अच्छी बातें ही करती है. दैट इज द प्रॉब्लम. वेरी ऑफ्टन द पॉलिटिशियंस आर नॉट विलिंग टू डू व्हाट द आवाम इज डूइंग.
4: इन मुफ्तियों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा कल.
1: अरे आवाम ने तो मनुस्मृति को भी डिनाउंस कर दिया बट येट यू कोट द मनुस्मृति. ओके वेरी क्विकली 30 सेकंड्स तुषार गुप्ता, देन आई एम गोइंग टू तुहीन एंड ब्रिंग इन द लेडी आल्सो. यस, जस्ट 30 सेकंड्स.
2: आवाम ने इन क्लेरिक्स का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है पर कांग्रेस तो उन्हें गले लगाती है. आवाम तो इनकी बात सुनेगी नहीं पर राहुल गांधी तो उन्हें सर पे बिठाते हैं. आवाम तो इनकी बात को मानती नहीं है पर राहुल गांधी इनकी बात तो करते नहीं, वो तो मनुस्मृति पर अटैक करते हैं. पद्मजा, व्हाई इट इज एंड दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड that Rahul Gandhi thinks he has the license to demean, abuse, disobey Hinduism,
4: because
2: every
4: Manu
2: cut of it, every
4: is endorsed by the ruling party
2: no
4: of this country
2: to raise a word against what clerics are saying. Vivek Srivastava kare
4: Manu Smriti is being endorsed by the ruling party of this
2: Vivek
4: country.
2: Vivek Srivastava
1: One at a time, please.
2: आपने कहा अवाम में हिम्मत है, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है क्या? आप सीधा इसका जवाब दीजिए ना.
1: No, and by no stretch of the imagination, even if individuals have said anything in support of the Manusmriti, we can safely say that the Manusmriti is not an alliance in any government across the country, as opposed to the IUML, which is standing in support of the extremely regressive views of what the Grand Mufti has said. Yasmin Farooqi, I want to bring you in at this point as well, because it's not just Mr. Abu Bakr, by the way. Another person at the same event as the Grand Mufti, AP Abdul Hakim Ansari, he went a step further, because people get emboldened, right? If one thing goes unchallenged, unchecked, almost, you know, a silent, tacit support is given to it. What did Mr. Ansari say? He went a step further and said that if Muslim women bear 3 children, they will get a straight ticket to heaven. The rights that have been given to women is that they don't have to sweat it out by working outdoor. Their liability falls on a man, either your husband or your father or the children, because women are chosen to breed. Is this the kind of patriarchy that is being legitimized through silence? Yasmin ji.
5: बिल्कुल नहीं पदमजा, बिल्कुल भी नहीं. ये सब बकवास है. और दूसरी बात ये है कि अगर किसी औरत का शौहर भी नहीं है और उसके भाई बाप भी नहीं है, बहुत सारे लोग अकेले होते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को भूखा मार देगी और वहीं ख़त्म कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है. और जो मुफ्ती इसरार साहब हैं, मेरे ख्याल से सब लोग बोले जा रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है, मुफ्ती इसरार साहब को बीजेपी वालों ने ही सर पे ज़्यादा बिठाया हुआ है. वही राष्ट्रपति भवन भी गए थे. और मैं इस कंट्रोवर्सी में वैसे पढ़ना नहीं चाहती, वो तो बात आई थी तो मैंने बात कह दी. लेकिन हाँ, मैं आपके चैनल से ये बात ज़रूर कहूँगी कि मेरी पार्टी SDPI ऐसा ना तो सोचती है. और आप मेरे थ्रू अगर ये चाहती हैं, क्योंकि मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं यहाँ से आपसे कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है. सबसे बड़ी बात ये, उनको हक ही नहीं है. इतनी बार प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि संविधान में सबको सब कुछ बोलने का हक है, तो वो भी बोले जा रहे हैं, लेकिन उनको इस्लामी नुक्ताए नज़र से इस तरह बोलने का कोई हक नहीं था. उनको नहीं बोलना चाहिए था. और कोई भी पाबंद नहीं है उनका. ये आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें जिसका दिल चाहेगा जो मज़हब अपनाएगा, जिसका दिल चाहेगा वो उस तरह जिएगा. कोई किसी पे पाबंदी लगाने के लिए बोलो तो बोलते रहो, वो संवैधानिक उनका अधिकार है. और अगर वो ये कहते हैं कि औरतों को बंद रहना चाहिए, तो किस बिहाफ पे कह रहे हैं वो? मेरे आज तक ये बात समझ में उनकी नहीं आई है कि इस्लाम के अगर उस पे वो पैरोकार बन के कह रहे हैं, तो उनको किसी ने ये इजाजत नहीं दी है.
1: क्योंकि शायद उनको पता है ना कि IUML उनको बैक करने के लिए पहुंच जाएगा. आज हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑन हिज ओन वी कैन कंप्लीटली इग्नोर द वर्ड्स ऑफ समबडी लाइक अ मिस्टर अबू बकर एंड से हु इज ही डजंट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. बट यास्मीन जी, फर्क तो ये है ना कि वहां पर एक ऐसे आदमी उनको बैक कर रहे हैं, जब IUML के स्टेट चीफ कहते हैं दैट महिलाओं को उनके अपनी सेफ्टी के लिए ये एक हिदायत दी गई है, और उसी IUML के 2 मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं और वो मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, तो अबू बकर साहब को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई हम किसी का हाथ है हमारे सर के ऊपर.
5: देखिए, इतनी ज़्यादा बात इस बात पे हो रही है, ये आपको भी पता है, और कोई भी समझदार मुसलमान या ना समझ भी, जिसको कम इल्म है इस्लाम के बारे में, कोई उनकी बात को ना तो तवज्जो दे रहा है ना समझेगा, क्योंकि वो बात सिरे से गलत है. वो उस चीज़ के लिए
1: तब तो आसान होना चाहिए ना, जो IUML के मंत्री हैं
5: हमारे पास.
1: जब ऑल राइट थिंकिंग पीपल लाइक योरसेल्फ आर सेइंग दैट दिस डजंट इवन मेक सेंस, व्हाई डोंट द IUML मिनिस्टर से दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस? जो आप
5: बताइए, जब
1: जो सैयद अब्बास कह सकते हैं, तो IUML के 2 मंत्री भी कह सकते हैं ना, IUML के चीफ भी कह सकते हैं केरला में कि बकवास है. ये
5: अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है पदम झा. आप एक बात बताइए कि जब मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है तो कौन खड़ा होके बोलता है? मुसलमान काटे जाएंगे, सुअर का, मैं उस चीज को इस वक्त यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता रही हूँ. रोज का मुसलमानों पे होता है हलाला हलाला हलाला, जबकि हलाला कोई वर्ड ही नहीं है इस्लाम में, कोई कुरान में हलाले का वर्ड नहीं है, फिर भी ये गाना गाया जाता है.
1: ओके, तो यू गॉट टू राइट थिंकिंग मुस्लिम्स ओवर हियर सेइंग दिस इज एब्सोल्यूट रबिश एंड दिस शुड नॉट बी लेजिटिमाइज्ड, दिस शुड नॉट बी एम्प्लीफाइड, तो एंड दिस शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड. तो
6: नो नो, सी you know, let me just put this in perspective for both Vivek and for Abbas. This is not about what the Maulana has said. You know, such Maulanas emerge from time to time. It is about the hypocrisy of the Congress party. We don't sermonize, like Rahul Gandhi, we don't sermonize about what other religious texts say. Since Rahul Gandhi is in the habit, it is grossly hypocritical.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: and catastrophic destruction in these valleys has shrunk to zero. Over 4,000 people remain unaccounted for. Bridges gone, road links have snapped, power lines are submerged, schools have been obliterated. Nepal isn't just counting its dead, it is sharing and staring at the monumental challenge of rebuilding its broken spine.
1: Amidst all the accounts of the loss of lives, of families which have gone missing, are also incredible stories of survival. Survival not just among those who survived the floods, but survival now onwards. Where do families in the impacted areas get food? What about their homes? What about their futures? My colleague Sikta has this report.
2: पेमा इस वक्त हमारे साथ है, हम आर्मी के हेलीपैड के ठीक बाहर मौजूद हैं। पेमा अपनी एक साल की बच्ची लम के साथ यहाँ आई हैं, अपने गांव में फंसी हुई थी और अब इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर मिले और काठमांडू वहाँ आप फंसी रही। लामू के लिए इंतज़ाम था वहाँ पे खाना पीने का? आपके गाँव में कितने लोग थे जब आप फंसे थे?
3: सौ
2: जना सब आ गए? खाली हो गया कि अभी और?
3: नहीं आया अभी, उधर ही।
2: सबको यहाँ आना है? तो क्या बोल रहे हैं, कोई रुक भी रहा है? कौन से गांव की हैं आप?
3: हम चिलमे।
2: अच्छा, चिलमे की हैं, जो वहाँ बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो अभी जो रुकना चाह रहे हैं वो रुक रहे हैं, जो आना चाह रहे आ रहे हैं? तो जो रुक रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? खाना हेलीकॉप्टर से पहुँचा है?
3: हेलीकॉप्टर से पहुँचा है।
2: लामू खुश है यहाँ के?
3: नहीं,
2: परेशान किया? पर सब तबीयत ठीक, घर में सब ठीक है? आप लोग कितने लोग आए हो? आप और?
3: मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड
2: भी आए हैं। कहाँ हैं आपके हस्बैंड? वो बैठे हैं। आप तीनों आप काठमांडू जाना चाह रहे हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर मिले, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम है? वहाँ कहाँ रहेंगे आप?
3: भैया के पास।
2: आपका भैया है?
1: It's time now for us to take a short break. We've got a team of NDTV correspondents spread out across Nepal. We'll continue to track this story and bring you every aspect of what is truly an unbelievable tragedy. For the moment, from all of us here, good night.

0: खिला खाना पीने का जैसे जैसे मैंने तब के गाँव में कितने लोग थे जब आप फंसे थे सौ जना सब आ गए खाली हो गया कि अभी और
1: नहीं आया अभी उधर ही
0: सबको यहाँ आना है सब क्या बोल रहे हैं कोई रुक भी रहा है कौन से गांव की हैं आप
1: हम चिलमे
0: अच्छा चिलमे की हैं जो वहाँ बॉर्डर के बिल्कुल पास है तो अभी जो रुकना चाह रहे हैं वो रुक रहे हैं जो आना चाह रहे हैं आ रहे हैं तो जो रुक रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है खाना हेलीकॉप्टर से पहुँचा
1: हेलीकॉप्टर से पहुँचाए
0: लामू खुश है यहाँ के परेशान किया पर सब तबीयत ठीक घर में सब ठीक है आप लोग कितने लोग आए हो आप और
1: मैं और मेरे बच्चे हस्बैंड
0: भी आए हैं कहाँ आपके हस्बैंड वो बैठे हैं आप तीनों आप काठमांडू जाना चाह रहे हो इसलिए इंतजार कर रहे हो हेलीकॉप्टर मिले लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम है वहाँ कहाँ रहेंगे आप
1: भैया के पास
0: आपका भैया है
2: It's time now for us to take a short break. We've got a team of NDTV correspondents spread out across Nepal. We'll continue to track this story and bring you every aspect of what is truly an unbelievable tragedy. For the moment, from all of us here, good night.
3: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power. From Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.